0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला ददु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अधि मीडिया नेट बिलकस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेटे। देने मस देबावायरु बिल नु देखिगें लारिया वीनुए नेंगिगें उलेक नुजे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे माफाही।
3: टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बड़े ती कंफ्यूज़न तक उनके नमन दा बदलता का बालानुला मैं दत्तरु ने मालूम की हम गैमेस आरोगण वरंग उन दागो कमें मैं अब तक हाँ सेटेक के एम में फ़ाहोगे खबर तंग अड़वा हाला ती ऐ हों तेरी तैयार तो मैं अब तक खबर तक आ की वस पत्तल पुरानी मोसा अश्वान
4: खबर

0: मुन्ना को बाकी ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना आरांगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में के दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बरको वैंडना हिंका में ने अफन थी कंग कोलन्ना
1: तिको तुम हाउ द है रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकांग कंग को देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: विष्टि क्या होती है सदी
1: मोहसिना बहुमिया
2: हम अभी थली स्टो
0: इब्राहिम लव जाए देना है।